कटर गिड़ता कदर चोम पज्जोम पज्जोम थीम थीक थिन थिन नादिरा थिनक थींग थिनक थींग।